हे खिलाड़ी, लाल कुल्हाड़ी, काली पहाड़ी, मोटा सेठ, लोहे का गेट, हो गई भोर, भागा चोर, नाचा मोर, मच गया शोर।

उसे आधा रॉबिन हुड मानते हैं, क्योंकि वो अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता कुछ नहीं।

0: Hear, feel the sound of NTN Radio, 89.1 FM. The music continues with Frederick Rampersad on the console.
1: Well, good evening, Guyana, to all of you in Guyana and across the world, whatever country you're listening in. Welcome to Musical Extravaganza, a journey in music, a journey in love. Thanks to our sponsors, and thanks to all of you joining as we take you into some of the Bollywood selections, all the love songs, and entertaining the way that you love listening to your radio. I'm Frederick Rampersad. Good evening.
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: Frederick Rampers.
1: Hear, feel the sound of NTN Radio 89.1 FM.
2: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे, और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।